0: विगत 39 वर्ष देखि संचालन नेपालको पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कंपनी नेशनल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नासिमताप काठमाडौं
1: NBL ऑटो लोन अब

0: 사쿠라 퍼스트 비전 우주 라디오 네트워크 कृषि मंत्री मार्क सिंगर
1: धान रोपे दुई तीन हफ्ता पछि खेत में पानी जमी रहे
0: जरा सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो अभियान
3: Studio time.
4: It's 7 a.m. बिहानको 7 बजे.
5: Time check को साथ में New Star Digital Color Lab तथा ज्वालामय Offset Press. सोलु दुधकुंड नगरपालिका 5 सोलु कुंभू.

0: Saiu rádio, sono é
1: Sonu FM, XA1 Gasmalov, 2 MHz. Ujjwal Bhavishya ko lagi, hamro abhiyan.
2: Sound check. Sonu FM, studio time.
3: टाइम
1: चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुर्गुंडा नगर पालिका 5 सोलु कुंडू

नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर हाम्रो प्रतिबद्धता पेट्रोलियम पदार्थमा शुद्धता यहाँबाट डिजल र पेट्रोल तपाईले भनेकै समयमा तुरन्त उपलब्ध छ सम्पर्क व्यक्ति परशुराम तामाङ 9847-87-35-19 समुद्र साक्य 9861-83-35-34 टेलिफोन 0385-20-43 नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर प्रोपाइटर तोरण कुमार श्रेष्ठ 9862-83-87 नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर सँगै यूआई सम मोटर पार्ट्स एण्ड सप्लायर्समा सम्पूर्ण गाड़ी मरमत सम्बन्धी सेवा उपलब्ध छ यहाँ साना तथा ठूला जुनसुकै गाड़ी मरमत गरिन्छ सम्पर्क रमिला श्रेष्ठ 9862-93-06-46 नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 7 गारमा जोरबौद सोलुखुम्बु

रात में अंधा गुप्त बदला मन बनाए चीना उल्ले अपने आकृति मन पहले समय रात में अंधा गुप्त बदला मन बनाए चीना